0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। जापान की वज़ीर-ए-आज़म ताकाइची सानाई का कहना है कि मुल्क मुमकिन तौर पर जून के खाम तेल की खरीदारी के हदफ का कम अज कम 70% मुख्तलिफ रास्तों और ज़राए से हासिल कर लेगा। हुकूमत ने मुतलका वुज़रा का इजलास मंगल को मुनाकिद किया, जिसमें ईरान जंग के असरात पर गौर किया गया। ताकाइची ने कहा, जून के लिए उम्मीद अफजा मंजरनामे को देखते हुए हम इस माह कौमी ज़खायर से खाम तेल की तीसरी खेप जारी नहीं करेंगे। हम खरीदारी को मतलब वो बनाते रहेंगे ताकि मुल्क की मजमूई ज़रूरियात के मुताबिक तेल हासिल किया जा सके और कौमी ज़खायर में कमी को कम से कम रखा जाए। दूसरी जानब तेल के मारूफ जापानी होलसेलर इदेमित्सु कोसान ने भी खाम तेल के हसूल की अपनी सलाहियत के हवाले से उम्मीद का इजहार किया है। इदेमित्सु कोसान के सदर साकाई नोरी आकी ने कहा कि सूरत हाल हूबहू पिछले साल जैसी नहीं है, लेकिन हम ऐसी पोजीशन में भी नहीं हैं जहां हमें सप्लाई हासिल करने में इंतहाई दुश्वारी का सामना हो। हमें यकीन है कि हम मौजूदा हालात में भी खरीदारी जारी रखने के काबिल होंगे। उन्होंने वजाहत की कि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब से मुतबादल रास्ते मौजूद हैं जो आबनाए हुर्मस को बाईपास करते हैं। मार्च में जापानी घरेलू खर्च में मुसलसल चौथे महीने कमी आई है। हुकूमती अहदेदारों ने कहा कि सार्फिन का तासुर खराब तर हो रहा है। दाखिला उमूर की वजारत ने कहा कि मार्च के महीने में दो या दो से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल घरानों के खर्चे में अफरात जर की जमा तफरीक के बाद एक साल पहले के मुकाबले में 2.9% की कमी आई। औसत खर्च 3,34,000 येन या तकरीबन $2,100 रहा। खुराक के खर्चे में 2.9% की कमी आई। कीमतों में इजाफे के बायस मछली से मुतलिका मसनूआत, अंडों और दीगर अशिया पर खर्च कम हो गया। रोशन पहलू के तौर पर फर्नीचर और घरेलू सामान पर खर्चे में 5.5% इजाफा हुआ, क्योंकि फूड रैप और प्लास्टिक फिल्म बैग्स पर अदायगियों में इजाफा हुआ। वजारत का कहना है कि ईरान के तनाजे के दौरान सार्फिन मुमकिन तौर पर पेट्रोलियम से तैयार होने वाली मसनूआत का जखीरा कर रहे थे। मगरबी जापान में क्योटो शाही महल मौसम की मुनासबत से फर्निशिंग तब्दील करने की सदियों पुरानी रवायत के साथ मौसम गर्मा की तैयारी कर रहा है। क्रोमोगाय का इनेकाद हर साल मई और नवंबर में किया जाता है। ख्याल किया जाता है कि यह रवायत साल में दो बार अलमारियों की तरतीब बदलने के जदीद रवाज की बुनियाद है। मंगल को शाही अमूरे खाना एजेंसी के 5 एहलकारों ने शहनशाह की रोजमर्रा की रहायशगाह सेरियोदेन में मौसम सरमा के फर्नीचर और फर्श पर बिछे सामान को मौसम गर्मा की अशिया के साथ तब्दील किया। हुकाम ने तकरीबन एक घंटा मिचोदाई कैनोपी के पर्दे तब्दील करने में गुजारा, जो आराम करने की जगह है। मौसम गर्मा के वर्जन में पर्दों में सफेद कुंजें पर फैलाए दिखाई देती हैं। एक अहलकार ने कहा कि वह चाहता है कि जहां आने वाले मौसम गर्मा की सजावट को देखें और मौसम को महसूस करें।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराही इजलास के लिए मंगल को चीन रवाना हो गए। तवक्को की जाती है कि वह तजारती और इक्तसादी मसाइल के साथ साथ ताइवान और ईरान के तनाज़े पर बातचीत करेंगे। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से कबल ईरानी हुकाम ने बीजिंग के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को उजागर किया है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुईं। मजीद खबरों, तबसरों और तज़ज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 14 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे शांगविला जैन और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेचिंग में मुलाकात की है। 9 साल में पहली बार चीन यात्रा पर गए ट्रंप बुधवार को राजधानी पहुंचे। बृहस्पतिवार को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। शी जिनपिंग ने अपने काफिले के साथ पहुंचे ट्रंप का अभिवादन किया और दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों नेता वार्ता के लिए भवन के अंदर गए। शी जिनपिंग ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि स्थिर द्विपक्षीय संबंध विश्व के लिए अच्छे हैं। आपसी सहयोग से चीन और अमेरिका दोनों को लाभ होगा और टकराव से हानि। हमें साझेदार होना चाहिए, प्रतिद्वंद्वी नहीं। ट्रंप ने स्वागत के लिए शी जिनपिंग को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। वास्तव में हमारे दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच अब तक का सबसे लंबा रिश्ता रहा है। दोनों नेताओं के बीच करीब 2.25 घंटे तक बातचीत हुई। जापानी व्यवसायों ने पिछले वित्त वर्ष में मजबूत लाभ दर्ज किए हैं, लेकिन अब पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण वे कठिन समय के लिए तैयार हो रहे हैं। आय संबंधी चर्चा जोरों पर है। SMBC निक्को सिक्योरिटीज ने मंगलवार तक वार्षिक नतीजे जारी कर चुकी 536 कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इनमें से कई कंपनियां टोक्यो शेयर बाजार के प्राइम मार्केट में सूचीबद्ध हैं। विश्लेषण में पाया गया कि तुलनात्मक आंकड़ों वाली 524 कंपनियों में से लगभग 70% ने मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष के लाभ में वृद्धि दर्ज की है। अमरीकी शुल्कों के बावजूद AI और डाटा केंद्रों की मजबूत मांग से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा मिला। बैंकों और प्रतिभूति कंपनियों को शेयरों की ऊंची कीमतों और ब्याज दरों से लाभ हुआ। हाल के वर्षों में कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन में भी वृद्धि हुई है, लेकिन यह चलन बदल सकता है। घाटे का अनुमान देने वाली 2 कंपनियों को छोड़कर शेष 40% कंपनियों को इस वित्त वर्ष में आय में गिरावट की आशंका है या उन्होंने अपने दृष्टिकोण को अनिर्धारित रखा है। कीमतों में वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादों की अस्थिर आपूर्ति के कारण माल ढुलाई कंपनियों, रसायन कंपनियों और वाहन निर्माताओं के लिए पूर्वानुमान कमजोर हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान संघर्ष के कारण विश्वसनीय आय का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। जापान के 3 मेगा बैंकों को अमरीकी स्टार्टअप एंथ्रोपिक द्वारा विकसित अत्याधुनिक AI मॉडल क्लॉड मिथोस तक पहुंच मिलने की उम्मीद है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये

तीन वित्तीय संस्थान MUFG, सुमितोमो मित्सुई और मिज़ुहो हैं। यदि योजनाओं को मंजूरी मिल जाती है तो नए AI मॉडल प्राप्त करने वाले देश के पहले संस्थान बन जाएंगे। कहा जाता है कि एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस में ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को पहचानने की असाधारण क्षमता है। इससे इस तकनीक के गलत हाथों में पड़ने की आशंका बढ़ गई है। साइबर हमलों के लिए इस मॉडल का उपयोग वित्तीय प्रणालियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिका में यह मॉडल केवल सीमित संख्या में कंपनियों और संगठनों को ही उपलब्ध कराया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में टोक्यो में जापानी वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी और अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक में क्लॉड मिथोस पर चर्चा की गई। कातायामा ने अमेरिका सरकार के साथ सहयोग करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की अपनी मंशा व्यक्त की है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में पार्किंसंस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए एक नई चिकित्सा पद्धति आशा की किरण लेकर आई है। वे जल्द ही देश की जन स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रयोगशाला में विकसित कोशिकाओं का उपयोग करके उपचार प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि उपचार दुनिया में पहली बार उपलब्ध कराया जा रहा है। जापानी दवा निर्माता कंपनी सुमितोमो फार्मा ने एमशेपरी का उत्पादन किया है। इसमें इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल यानी आईपीएस कोशिकाओं से प्राप्त तंत्रिका ऊतक का उपयोग किया जाता है। ये उपचार पार्किंसंस रोग से पीड़ित लोगों में शारीरिक गतिविधि क्षमता को बहाल करने के लिए बनाया गया है। 7 मरीजों ने नैदानिक परीक्षणों में भाग लिया, जिनमें से कुछ की गतिविधि क्षमता में सुधार देखा गया। चिकित्सा अधिकारियों ने एमशेपरी को जन स्वास्थ्य बीमा में शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने उपचार की लागत लगभग 5,53,00,000 येन यानी $3,50,000 निर्धारित की है। मासिक खर्च की सीमा तय करने वाली व्यवस्था के कारण मरीजों पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो जाएगा। सुमितोमो फार्मा को उम्मीद है कि इलाज इस वर्ष शरद ऋतु के आसपास शुरू हो जाएगा। कंपनी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष करीब 130 मरीजों का इलाज किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने अंतरिक्ष टेलीस्कोप का उपयोग करके अब तक खोजी गई रासायनिक रूप से सबसे पुरानी तारा निर्माण करने वाली आकाशगंगा का अवलोकन किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दल में जापान के कानाजावा विश्वविद्यालय और जापान की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला के शोधकर्ता शामिल हैं। उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके LAP-1B नामक एक अत्यंत धुंधली आकाशगंगा से उत्सर्जित प्रकाश का अध्ययन किया। LAP-1B ने 13 अरब साल पहले यानी बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद ये प्रकाश उत्सर्जित किया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि धुंधली आकाशगंगा को ग्रेविटेशनल लेंसिंग नामक प्रभाव से मैग्नीफाई किया गया, जिससे आकाशगंगाओं के एक विशाल समूह के पास से गुजरने के बाद उससे निकलने वाला प्रकाश एम्पलीफाई हो गया। उनका कहना है कि 30 घंटे से अधिक समय के अवलोकन के बाद उन्होंने पुष्टि की कि LAP-1B में ऑक्सीजन की उपस्थिति अब तक देखी गई सभी आकाशगंगाओं में सबसे कम थी। उनका कहना है कि ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व लगभग ना के बराबर मौजूद थे, लेकिन ऐसे पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई। कानाजावा विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर नाकाजिमा किमिहिको के अनुसार ये शोध ये समझाने में मदद करता है कि मानव के उद्भव का कारण बनने वाले तत्व अंतरिक्ष में कैसे बने और एकत्रित हुए। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 11वें पाठ में हम पूछना सीखेंगे कोई चीज उपलब्ध है या नहीं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। आज वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ आसाकुसा आई है। दोनों सेंसोजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य गली नाकामी से दोरी में उपहार बेचने वाली दुकानें देख रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 11वें पाठ की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने ताम से कहा,
2: कोनो टी-शर्ट मीते?
1: ये टी-शर्ट देखो,
3: निंजा ते काइतारु,
1: निंजा लिखा हुआ है।
0: ताम ने टी-शर्ट की तरफ देखकर कहा,
3: आ, निंजा!
1: अरे वाह, निंजा!
0: फिर दुकानदार की आवाज आई,
4: इराशाइमासे,
0: आइए आइए।
1: ताम ने दुकानदार से पूछा,
3: सुमिमासे, ओमामोरी वा अरिमासु का?
1: माफ कीजिए, तावीज है।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
4: चोट्टो कोको नी वा अरिमासेन ने,
0: यहाँ तो नहीं है।
1: फिर मिया ने ताम को बताया,
3: ताम, ओमामोरी वा ओतेरा नी आरियो।
1: ताम, तावीज मंदिर में मिलते हैं।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
3: ओतेरा देस का?
1: मंदिर में।
0: फिर मिया ने कहा,
3: इकिमाशो,
1: चलो।
0: दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जापानी तावीज क्या होते हैं। जापानी भाषा में इन्हें ओमामोरी कहते हैं। ये आमतौर पर शिंतो और बौद्ध धर्म के मंदिरों में मिलते हैं। इन्हें शुभ माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि ये मुसीबतों से बचाते हैं।
1: दोस्तों, अब एक बार फिर सुन लेते हैं आज की बातचीत।
2: कोनो टी-शर्ट मीते, निंजा ते काइतारु।
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: ओमामोरी वा अरिमासु का,
1: यानी तावीज है। इसे याद करके आप पूछ सकते हैं कि जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं।
0: इस वाक्य में
6: ओमामोरी
0: का अर्थ है तावीज। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है,
6: अरिमासु
0: है क्रिया
6: अरु
0: यानी होना का मास रूप, और उसके बाद लगा है का, जिससे वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि खरीदारी करते समय जो चीज आप ढूंढ रहे हो उसके नाम के बाद लगाना है कारक वा, और उसके बाद बोलना है
6: अरिमासु का।
0: तो सुनिए और दोहराइए,
6: अरिमासु का, ओमामोरी वा अरिमासु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी पर्यटन केंद्र में कुछ ढूंढ रहा है।
7: すみません, 地図はありますか?
8: はい, こちらです।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले पर्यटक ने पूछा,
7: すみません, 地図はありますか?
0: माफ कीजिए, नक्शा है?
1: यहाँ
6: चीज़
1: का अर्थ है नक्शा।
0: कर्मचारी ने उत्तर दिया,
8: हाई कोचिरा देस।
1: जी ये रहा।
0: अगर वो चीज उपलब्ध ना हो तो शायद आपको
6: अरिमासेन
0: यानी नहीं है जैसा सीधा उत्तर नहीं बल्कि थोड़ा घुमा फिरा कर जवाब मिलेगा, जैसे
6: चोत्तो
0: यानी जरा, या माफी मांगते हुए
6: सुमिमासेन
0: यानी माफ कीजिए।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
6: चीज़ वा अरिमास का? すみません。 地図はありますか?
1: अब मान लीजिए आप जापान की कोई यादगार चीज खरीद कर ले जाना चाहते हैं और जापानी हाथ का पंखा ढूंढ रहे हैं।
0: हाथ के पंखे को जापानी भाषा में कहते हैं
6: सेंस, सेंस।
0: तो वाक्य में पहले सुमिमासेन लगाकर पूछने की कोशिश कीजिए।
8: सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का? सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का?
1: अब मान लीजिए कि आप पूछना चाहते हैं कि निंजा टी शर्ट है या नहीं। टी शर्ट को कहते हैं
6: टी शर्ट्स।
1: निंजा टी शर्ट बोलने के लिए बीच में कारक नो लगाकर बनेगा
6: निंजा नो टी शर्ट्स, निंजा नो टी शर्ट्स।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: すみません, निंजा नो टी शर्ट्स वा अरिमासु का? すみません, निंजा नो टी शर्ट्स वा अरिमासु का?
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, आप भी याद कर लीजिए।
9: いらっしゃいませ।
6: いらっしゃいませ
1: का अर्थ है आइए आइए या स्वागत है। जब भी कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है उसका इस अभिवादन से स्वागत किया जाता है।
0: तो इसे अलग अलग आवाजों में सुन लेते हैं।
10: いらっしゃいませ।
11: いらっしゃいませ।
10: いらっしゃいませ।
1: और अब एक बार फिर सुनते हैं आज की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
9: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
6: トラベルガイド।
0: अब समय है अंश घूमे मिया के साथ का। आज हम बताएंगे टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल आसाकुसा के बारे में, जहां ताम मिया के साथ गई थी।
1: आसाकुसा टोक्यो के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वहां कामिनारी मोन है जो सेंसोजी मंदिर का प्रवेश द्वार है। बड़ी सी लाल कंदील उस द्वार की पहचान है। वहीं से मुख्य भवन तक की 250 मीटर लंबी नाकामिसे गली शुरू हो जाती है, जिसके दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं।
0: इन दुकानों में उपहार, मिठाइयां और दूसरी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे हाथ से बने चावल के गर्मा गर्म पापड़ या आजुकी दानों के मीठे पेस्ट से भरी निंग्यो याकी। वहाँ टी शर्ट, हाथ के पंखे और चॉपस्टिक्स भी मिलते हैं।
1: नाकामिसे गली के अंत में सेंसोजी मंदिर का मुख्य भवन है। टोक्यो स्काईट्री भी पास ही है, वहाँ पैदल जा सकते हैं।
0: बहुत सारे पर्यटक इन दोनों जगहों पर एक ही दिन में जाते हैं। आपको अगर मौका मिले तो इस क्षेत्र में टहलने का आनंद जरूर लीजिएगा।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम मंदिर से तावीज खरीदेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है

यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 14 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे शांगविला जैन और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेचिंग में मुलाकात की है। 9 साल में पहली बार चीन यात्रा पर गए ट्रंप बुधवार को राजधानी पहुंचे। बृहस्पतिवार को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। शी जिनपिंग ने अपने काफिले के साथ पहुंचे ट्रंप का अभिवादन किया और दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों नेता वार्ता के लिए भवन के अंदर गए। शी जिनपिंग ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि स्थिर द्विपक्षीय संबंध विश्व के लिए अच्छे हैं। आपसी सहयोग से चीन और अमेरिका दोनों को लाभ होगा और टकराव से हानि। हमें साझेदार होना चाहिए, प्रतिद्वंद्वी नहीं। ट्रंप ने स्वागत के लिए शी जिनपिंग को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। वास्तव में हमारे दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच अब तक का सबसे लंबा रिश्ता रहा है। दोनों नेताओं के बीच करीब 2.25 घंटे तक बातचीत हुई। जापानी व्यवसायों ने पिछले वित्त वर्ष में मजबूत लाभ दर्ज किए हैं, लेकिन अब पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण वे कठिन समय के लिए तैयार हो रहे हैं। आय संबंधी चर्चा जोरों पर है। SMBC निक्को सिक्योरिटीज ने मंगलवार तक वार्षिक नतीजे जारी कर चुकी 536 कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इनमें से कई कंपनियां टोक्यो शेयर बाजार के प्राइम मार्केट में सूचीबद्ध हैं। विश्लेषण में पाया गया कि तुलनात्मक आंकड़ों वाली 524 कंपनियों में से लगभग 70% ने मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष के लाभ में वृद्धि दर्ज की है। अमरीकी शुल्कों के बावजूद AI और डाटा केंद्रों की मजबूत मांग से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा मिला। बैंकों और प्रतिभूति कंपनियों को शेयरों की ऊंची कीमतों और ब्याज दरों से लाभ हुआ। हाल के वर्षों में कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन में भी वृद्धि हुई है, लेकिन यह चलन बदल सकता है। घाटे का अनुमान देने वाली 2 कंपनियों को छोड़कर शेष 40% कंपनियों को इस वित्त वर्ष में आय में गिरावट की आशंका है या उन्होंने अपने दृष्टिकोण को अनिर्धारित रखा है। कीमतों में वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादों की अस्थिर आपूर्ति के कारण माल ढुलाई कंपनियों, रसायन कंपनियों और वाहन निर्माताओं के लिए पूर्वानुमान कमजोर हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान संघर्ष के कारण विश्वसनीय आय का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। जापान के 3 मेगा बैंकों को अमरीकी स्टार्टअप एंथ्रोपिक द्वारा विकसित अत्याधुनिक AI मॉडल क्लॉड मिथोस तक पहुंच मिलने की उम्मीद है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये 3 वित्तीय संस्थान MUFG, सुमितोमो मित्सुई और मिसुहो हैं। यदि योजनाओं को मंजूरी मिल जाती है तो नए AI मॉडल प्राप्त करने वाले देश के पहले संस्थान बन जाएंगे। कहा जाता है कि एंथ्रोपिक के क्लॉड मिथोस में ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को पहचानने की असाधारण क्षमता है। इससे इस तकनीक के गलत हाथों में पड़ने की आशंका बढ़ गई है। साइबर हमलों के लिए इस मॉडल का उपयोग वित्तीय प्रणालियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिका में ये मॉडल केवल सीमित संख्या में कंपनियों और संगठनों को ही उपलब्ध कराया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में टोक्यो में जापानी वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी और अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक में क्लॉड मिथोस पर चर्चा की गई। कातायामा ने अमरीका सरकार के साथ सहयोग करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की अपनी मंशा व्यक्त की है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में पार्किंसंस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए एक नई चिकित्सा पद्धति आशा की किरण लेकर आई है। वे जल्द ही देश की जन स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रयोगशाला में विकसित कोशिकाओं का उपयोग करके उपचार प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि उपचार दुनिया में पहली बार उपलब्ध कराया जा रहा है। जापानी दवा निर्माता कंपनी सुमितोमो फार्मा ने एमशेपरी का उत्पादन किया है। इसमें इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल यानी आईपीएस कोशिकाओं से प्राप्त तंत्रिका ऊतक का उपयोग किया जाता है। ये उपचार पार्किंसंस रोग से पीड़ित लोगों में शारीरिक गतिविधि क्षमता को बहाल करने के लिए बनाया गया है। 7 मरीजों ने नैदानिक परीक्षणों में भाग लिया, जिनमें से कुछ की गतिविधि क्षमता में सुधार देखा गया। चिकित्सा अधिकारियों ने एमशेपरी को जन स्वास्थ्य बीमा में शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने उपचार की लागत लगभग 5,53,00,000 येन यानी $3,50,000 निर्धारित की है। मासिक खर्च की सीमा तय करने वाली व्यवस्था के कारण मरीजों पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो जाएगा। सुमितोमो फार्मा को उम्मीद है कि इलाज इस वर्ष शरद ऋतु के आसपास शुरू हो जाएगा। कंपनी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष करीब 130 मरीजों का इलाज किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने अंतरिक्ष टेलीस्कोप का उपयोग करके अब तक खोजी गई रासायनिक रूप से सबसे पुरानी तारा निर्माण करने वाली आकाशगंगा का अवलोकन किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दल में जापान के कानाजावा विश्वविद्यालय और जापान की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला के शोधकर्ता शामिल हैं। उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके LAP-1B नामक एक अत्यंत धुंधली आकाशगंगा से उत्सर्जित प्रकाश का अध्ययन किया। LAP-1B ने 13 अरब साल पहले यानी बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद ये प्रकाश उत्सर्जित किया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि धुंधली आकाशगंगा को ग्रेविटेशनल लेंसिंग नामक प्रभाव से मैग्निफाई किया गया, जिससे आकाशगंगाओं के एक विशाल समूह के पास से गुजरने के बाद उससे निकलने वाला प्रकाश एम्पलीफाई हो गया। उनका कहना है कि 30 घंटे से अधिक समय के अवलोकन के बाद उन्होंने पुष्टि की कि LAP-1B में ऑक्सीजन की उपस्थिति अब तक देखी गई सभी आकाशगंगाओं में सबसे कम थी। उनका कहना है कि ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व लगभग ना के बराबर मौजूद थे, लेकिन ऐसे पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई। कानाजावा विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर नाकाजिमा किमिहिको के अनुसार ये शोध ये समझाने में मदद करता है कि मानव के उद्भव का कारण बनने वाले तत्व अंतरिक्ष में कैसे बने और एकत्रित हुए। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 11वें पाठ में हम पूछना सीखेंगे कोई चीज उपलब्ध है या नहीं।

0: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। आज वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ आसाकुसा आई है। दोनों सेंसोजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य गली नाकामिसे दोरी में उपहार बेचने वाली दुकानें देख रही हैं।
1: तो आइए सुनते हैं 11वें पाठ की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले मिया ने ताम से कहा,
2: कोनो टी-शर्ट मीते,
0: ये टी-शर्ट देखो,
3: निंजा ते काइते अरु,
0: निंजा लिखा हुआ है।
1: ताम ने टी-शर्ट की तरफ देखकर कहा,
3: आ, निंजा,
0: अरे वाह निंजा।
1: फिर दुकानदार की आवाज आई,
4: इराशाई मासे,
1: आइए आइए।
0: ताम ने दुकानदार से पूछा,
3: सुनिमासे, ओमामोरी वा अरिमास का?
0: माफ कीजिए, तावीज है।
1: दुकानदार ने जवाब दिया,
4: चोट्टो कोको नी वा अरिमासेन ने,
1: यहाँ तो नहीं है।
0: फिर मिया ने ताम को बताया,
3: ताम, ओमामोरी वा ओतेरा नी आरियो।
0: ताम, तावीज मंदिर में मिलते हैं।
1: उसके बाद ताम ने पूछा,
3: ओतेरा देस का?
0: मंदिर में।
1: फिर मिया ने कहा,
3: इकिमाशो,
0: चलो।
1: दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जापानी तावीज क्या होते हैं। जापानी भाषा में इन्हें ओमामोरी कहते हैं। ये आमतौर पर शिंतो और बौद्ध धर्म के मंदिरों में मिलते हैं। इन्हें शुभ माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि ये मुसीबतों से बचाते हैं।
0: दोस्तों, अब एक बार फिर सुन लेते हैं आज की बातचीत।
2: कोनो टी शर्ट मीते, निंजा ते काइते अरु।
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: ओमामोरी वा अरिमासु का,
0: यानी तावीज है। इसे याद करके आप पूछ सकते हैं कि जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं।
1: इस वाक्य में
6: ओमामोरी
1: का अर्थ है तावीज। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है,
6: अरिमास
1: है क्रिया,
6: अरु
1: यानी होना का मास रूप, और उसके बाद लगा है का, जिससे वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि खरीदारी करते समय जो चीज आप ढूंढ रहे हो उसके नाम के बाद लगाना है कारक वा, और उसके बाद बोलना है
6: अरिमास का।
1: तो सुनिए और दोहराइए,
6: अरिमास का, ओमामोरी वा अरिमास का।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी पर्यटन केंद्र में कुछ ढूंढ रहा है।
7: すみません, 地図はありますか?
8: はい, こちらです।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
0: पहले पर्यटक ने पूछा,
7: すみません, 地図はありますか?
1: माफ कीजिए, नक्शा है?
0: यहाँ
6: 地図
0: का अर्थ है नक्शा।
1: कर्मचारी ने उत्तर दिया,
8: हाई कोचिरा देस,
0: जी ये रहा।
1: अगर वो चीज उपलब्ध ना हो तो शायद आपको
6: अरिमासेन
1: यानी नहीं है जैसा सीधा उत्तर नहीं, बल्कि थोड़ा घुमा फिरा कर जवाब मिलेगा, जैसे
6: चोट्टो
1: यानी जरा, या माफी मांगते हुए
6: सुमिमासेन
1: यानी माफ कीजिए।
0: तो सुनिए और दोहराइए,
6: 地図はありますか？すみません、地図はありますか？
0: अब मान लीजिए आप जापान की कोई यादगार चीज खरीद कर ले जाना चाहते हैं और जापानी हाथ का पंखा ढूंढ रहे हैं।
1: हाथ के पंखे को जापानी भाषा में कहते हैं
6: सेंस, सेंस।
1: तो वाक्य में पहले सुमिमासेन लगाकर पूछने की कोशिश कीजिए।
3: सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का? सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का?
0: अब मान लीजिए कि आप पूछना चाहते हैं कि निंजा टी शर्ट है या नहीं। टी शर्ट को कहते हैं
6: टी शर्ट्स।
0: निंजा टी शर्ट बोलने के लिए बीच में कारक नो लगाकर बनेगा
6: निंजा नो टी शर्ट्स, निंजा नो टी शर्ट्स।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: すみません, निंजा नो टी शर्ट्स वा अरिमासु का? すみません。忍者の T シャツはありますか？
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की। आप भी याद कर लीजिए।
4: いらっしゃいませ。
6: いらっしゃいませ。
0: का अर्थ है आइए आइए या स्वागत है। जब भी कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है, उसका इस अभिवादन से स्वागत किया जाता है।
1: तो इसे अलग अलग आवाजों में सुन लेते हैं।
9: いらっしゃいませ。
10: いらっしゃいませ。
9: いらっしゃいませ。
0: और अब एक बार फिर सुनते हैं आज की बातचीत。
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。わあ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
2: 行きましょう。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब समय है अंश घूमे मिया के साथ का। आज हम बताएंगे टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल आसाकुसा के बारे में, जहां ताम मिया के साथ गई थी।
0: आसाकुसा टोक्यो के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वहाँ कामिनारी मोन है, जो सेंसोजी मंदिर का प्रवेश द्वार है। बड़ी सी लाल कंदील उस द्वार की पहचान है। वहीं से मुख्य भवन तक की 250 मीटर लंबी नाकामिसे गली शुरू हो जाती है, जिसके दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं।
1: इन दुकानों में उपहार, मिठाइयाँ और दूसरी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे हाथ से बने चावल के गर्मा गर्म पापड़ या आजुकी दानों के मीठे पेस्ट से भरी निंग्यो याकी। वहाँ टी शर्ट, हाथ के पंखे और चॉपस्टिक्स भी मिलते हैं।
0: नाकामिसे गली के अंत में सेंसोजी मंदिर का मुख्य भवन है। टोक्यो स्काई ट्री भी पास ही है, वहाँ आप पैदल जा सकते हैं।
1: बहुत सारे पर्यटक इन दोनों जगहों पर एक ही दिन में जाते हैं। आपको अगर मौका मिले तो इस क्षेत्र में टहलने का आनंद जरूर लीजिएगा।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में ताम मंदिर से तावीज खरीदेंगी। तब तक के लिए
0: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 14 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे शांगविला जैन और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पेचिंग में मुलाकात की है। 9 साल में पहली बार चीन यात्रा पर गए ट्रंप बुधवार को राजधानी पहुंचे। बृहस्पतिवार को ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। शी जिनपिंग ने अपने काफिले के साथ पहुंचे ट्रंप का अभिवादन किया और दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों नेता वार्ता के लिए भवन के अंदर गए। शी जिनपिंग ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि स्थिर

द्विपक्षीय संबंध विश्व के लिए अच्छे हैं। आपसी सहयोग से चीन और अमेरिका दोनों को लाभ होगा और टकराव से हानि। हमें साझेदार होना चाहिए, प्रतिद्वंद्वी नहीं। ट्रंप ने स्वागत के लिए शी जिनपिंग को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। वास्तव में हमारे दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच अब तक का सबसे लंबा रिश्ता रहा है। दोनों नेताओं के बीच करीब 2.25 घंटे तक बातचीत हुई। जापानी व्यवसायों ने पिछले वित्त वर्ष में मजबूत लाभ दर्ज किए हैं, लेकिन अब पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण वे कठिन समय के लिए तैयार हो रहे हैं। आय संबंधी चर्चा जोरों पर है। SMBC निक्को सिक्योरिटीज ने मंगलवार तक वार्षिक नतीजे जारी कर चुकी 536 कंपनियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। इनमें से कई कंपनियां टोक्यो शेयर बाजार के प्राइम मार्केट में सूचीबद्ध हैं। विश्लेषण में पाया गया कि तुलनात्मक आंकड़ों वाली 524 कंपनियों में से लगभग 70% ने मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष के लाभ में वृद्धि दर्ज की है। अमरीकी शुल्कों के बावजूद AI और डाटा केंद्रों की मजबूत मांग से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को बढ़ावा मिला। बैंकों और प्रतिभूति कंपनियों को शेयरों की ऊंची कीमतों और ब्याज दरों से लाभ हुआ। हाल के वर्षों में कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वेतन में भी वृद्धि हुई है, लेकिन यह चलन बदल सकता है। घाटे का अनुमान देने वाली 2 कंपनियों को छोड़कर शेष 40% कंपनियों को इस वित्त वर्ष में आय में गिरावट की आशंका है या उन्होंने अपने दृष्टिकोण को अनिर्धारित रखा है। कीमतों में वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादों की अस्थिर आपूर्ति के कारण माल ढुलाई कंपनियों, रसायन कंपनियों और वाहन निर्माताओं के लिए पूर्वानुमान कमजोर हो गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईरान संघर्ष के कारण विश्वसनीय आय का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। जापान के 3 मेगा बैंकों को अमरीकी स्टार्टअप एंथ्रोपिक द्वारा विकसित अत्याधुनिक AI मॉडल क्लॉड मिथोस तक पहुंच मिलने की उम्मीद है। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि ये 3 वित्तीय संस्थान MUFG, सुमितोमो मित्सुई और मिजुहो हैं। यदि योजनाओं को मंजूरी मिल जाती है तो नए AI मॉडल प्राप्त करने वाले देश के पहले संस्थान बन जाएंगे। कहा जाता है कि एंथ्रोपिक के क्लॉड मिथोस में ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को पहचानने की असाधारण क्षमता है। इससे इस तकनीक के गलत हाथों में पड़ने की आशंका बढ़ गई है। साइबर हमलों के लिए इस मॉडल का उपयोग वित्तीय प्रणालियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अमेरिका में यह मॉडल केवल सीमित संख्या में कंपनियों और संगठनों को ही उपलब्ध कराया गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में टोक्यो में जापानी वित्त मंत्री कातायामा सात्सुकी और अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक में क्लॉड मिथोस पर चर्चा की गई। कातायामा ने अमरीका सरकार के साथ सहयोग करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की अपनी मंशा व्यक्त की है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान में पार्किंसंस रोग से पीड़ित मरीजों के लिए एक नई चिकित्सा पद्धति आशा की किरण लेकर आई है। वे जल्द ही देश की जन स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रयोगशाला में विकसित कोशिकाओं का उपयोग करके उपचार प्राप्त कर सकेंगे। गौरतलब है कि उपचार दुनिया में पहली बार उपलब्ध कराया जा रहा है। जापानी दवा निर्माता कंपनी सुमितोमो फार्मा ने एमशेपरी का उत्पादन किया है। इसमें इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल यानी आईपीएस कोशिकाओं से प्राप्त तंत्रिका ऊतक का उपयोग किया जाता है। ये उपचार पार्किंसंस रोग से पीड़ित लोगों में शारीरिक गतिविधि क्षमता को बहाल करने के लिए बनाया गया है। 7 मरीजों ने नैदानिक परीक्षणों में भाग लिया, जिनमें से कुछ की गतिविधि क्षमता में सुधार देखा गया। चिकित्सा अधिकारियों ने एमशेपरी को जन स्वास्थ्य बीमा में शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने उपचार की लागत लगभग

0: 5 करोड़ 53 लाख येन यानी $3.5 लाख निर्धारित की है। मासिक खर्च की सीमा तय करने वाली व्यवस्था के कारण मरीजों पर पड़ने वाला बोझ काफी कम हो जाएगा। सुमितोमो फार्मा को उम्मीद है कि इलाज इस वर्ष शरद ऋतु के आसपास शुरू हो जाएगा। कंपनी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष करीब 130 मरीजों का इलाज किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने अंतरिक्ष टेलीस्कोप का उपयोग करके अब तक खोजी गई रासायनिक रूप से सबसे पुरानी तारा निर्माण करने वाली आकाशगंगा का अवलोकन किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दल में जापान के कानाजावा विश्वविद्यालय और जापान की राष्ट्रीय खगोलीय वेधशाला के शोधकर्ता शामिल हैं। उन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके LAP-1B नामक एक अत्यंत धुंधली आकाशगंगा से उत्सर्जित प्रकाश का अध्ययन किया। LAP-1B ने 13 अरब साल पहले यानी बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद ये प्रकाश उत्सर्जित किया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि धुंधली आकाशगंगा को ग्रेविटेशनल लेंसिंग नामक प्रभाव से मैग्नीफाई किया गया, जिससे आकाशगंगाओं के एक विशाल समूह के पास से गुजरने के बाद उससे निकलने वाला प्रकाश एम्पलीफाई हो गया। उनका कहना है कि 30 घंटे से अधिक समय के अवलोकन के बाद उन्होंने पुष्टि की कि LAP-1B में ऑक्सीजन की उपस्थिति अब तक देखी गई सभी आकाशगंगाओं में सबसे कम थी। उनका कहना है कि ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व लगभग ना के बराबर मौजूद थे, लेकिन ऐसे पदार्थों की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती गई। कानाजावा विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर नाकाजिमा किमिहिको के अनुसार ये शोध ये समझाने में मदद करता है कि मानव के उद्भव का कारण बनने वाले तत्व अंतरिक्ष में कैसे बने और एकत्रित हुए। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 11वें पाठ में हम पूछना सीखेंगे कोई चीज उपलब्ध है या नहीं।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। आज वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ आसाकुसा आई है। दोनों सेंसोजी मंदिर तक जाने वाली मुख्य गली नाकामी से दोरी में उपहार बेचने वाली दुकानें देख रही हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 11वें पाठ की बातचीत।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने ताम से कहा,
2: कोनो टी-शर्ट मीते?
1: ये टी-शर्ट देखो,
3: निंजा ते काइतारु,
1: निंजा लिखा हुआ है।
0: ताम ने टी-शर्ट की तरफ देखकर कहा,
3: आ, निंजा!
1: अरे वाह, निंजा!
0: फिर दुकानदार की आवाज आई,
4: इराशाइमासे,
0: आइए आइए।
1: ताम ने दुकानदार से पूछा,
3: सुमिमासे, ओमामोरी वा अरिमासु का?
1: माफ कीजिए, तावीज है।
0: दुकानदार ने जवाब दिया,
4: चोट्टो कोको नी वा अरिमासेन ने,
0: यहाँ तो नहीं है।
1: फिर मिया ने ताम को बताया,
3: ताम, ओमामोरी वा ओतेरा नी आरियो?
1: ताम, तावीज मंदिर में मिलते हैं।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
3: ओतेरा देस का?
1: मंदिर में?
0: फिर मिया ने कहा,
3: इकिमाशो,
1: चलो।
0: दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जापानी तावीज क्या होते हैं। जापानी भाषा में इन्हें ओमामोरी कहते हैं। ये आमतौर पर शिंतो और बौद्ध धर्म के मंदिरों में मिलते हैं। इन्हें शुभ माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि ये मुसीबतों से बचाते हैं।
1: दोस्तों, अब एक बार फिर सुन लेते हैं आज की बातचीत।
2: कोनो टी-शर्ट मीते, निंजा ते काइतारु।
3: निंजा!
4: いらっしゃいませ。
3: すみません。お守りはありますか？
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム、お守りはお寺にあるよ。
5: お寺ですか？
3: 行きましょう。
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: ओमामोरी वा अरिमासु का,
1: यानी तावीज है। इसे याद करके आप पूछ सकते हैं कि जो चीज आप ढूंढ रहे हैं वो है या नहीं।
0: इस वाक्य में
6: ओमामोरी
0: का अर्थ है तावीज। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है,
6: अरिमासु
0: है क्रिया
6: अरु
0: यानी होना का मास रूप, और उसके बाद लगा है का, जिससे वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि खरीदारी करते समय जो चीज आप ढूंढ रहे हो उसके नाम के बाद लगाना है कारक वा, और उसके बाद बोलना है
6: अरिमासु का।
0: तो सुनिए और दोहराइए,
6: अरिमासु का, ओमामोरी वा अरिमासु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी पर्यटन केंद्र में कुछ ढूंढ रहा है।
7: すみません, 地図はありますか?
8: はい, こちらです।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले पर्यटक ने पूछा,
7: すみません, 地図はありますか?
0: माफ कीजिए, नक्शा है?
1: यहाँ
6: चीज़
1: का अर्थ है नक्शा।
0: कर्मचारी ने उत्तर दिया,
8: हाई कोचिरा देस।
1: जी ये रहा।
0: अगर वो चीज उपलब्ध ना हो तो शायद आपको
6: अरिमासेन
0: यानी नहीं है जैसा सीधा उत्तर नहीं बल्कि थोड़ा घुमा फिरा कर जवाब मिलेगा, जैसे
6: चोटो
0: यानी जरा, या माफी मांगते हुए
6: सुमिमासेन
0: यानी माफ कीजिए।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
6: चीज़ वा अरिमास का? すみません。 地図はありますか?
1: अब मान लीजिए आप जापान की कोई यादगार चीज खरीद कर ले जाना चाहते हैं और जापानी हाथ का पंखा ढूंढ रहे हैं।
0: हाथ के पंखे को जापानी भाषा में कहते हैं
6: सेंस। सेंस।
0: तो वाक्य में पहले सुमिमासेन लगाकर पूछने की कोशिश कीजिए।
8: सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का? सुमिमासेन, सेंस वा अरिमासु का?
1: अब मान लीजिए कि आप पूछना चाहते हैं कि निंजा टी शर्ट है या नहीं। टी शर्ट को कहते हैं
6: टी शर्ट।
1: निंजा टी शर्ट बोलने के लिए बीच में कारक नो लगाकर बनेगा
6: निंजा नो टी शर्ट। निंजा नो टी शर्ट।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
7: すみません निंजा नो टी शर्ट वा अरिमासु का? すみません忍者の T シャツはありますか?

0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, आप भी याद कर लीजिए।
1: いらっしゃいませ।
2: いらっしゃいませ
3: का अर्थ है आइए आइए या स्वागत है। जब भी कोई ग्राहक किसी दुकान में जाता है, उसका इस अभिवादन से स्वागत किया जाता है।
0: तो इसे अलग अलग आवाजों में सुन लेते हैं।
4: いらっしゃいませ।
5: いらっしゃいませ।
6: いらっしゃいませ।
3: और अब एक बार फिर सुनते हैं आज की बातचीत।
7: この T シャツ見て、忍者って書いてある。ああ、忍者。
1: いらっしゃいませ。
7: すみません。お守りはありますか？
8: ちょっとここにはありませんね。
7: ダム、お守りはお寺にあるよ。
9: お寺ですか？
7: 行きましょう。
10: トラベルガイド।
0: अब समय है अंश घूमे मिया के साथ का। आज हम बताएंगे टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल आसाकुसा के बारे में, जहां ताम मिया के साथ गई थी।
3: आसाकुसा टोक्यो के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। वहां कामिनारी मोन है, जो सेंसोजी मंदिर का प्रवेश द्वार है। बड़ी सी लाल कंदील उस द्वार की पहचान है। वहीं से मुख्य भवन तक की 250 मीटर लंबी नाकामिसे गली शुरू हो जाती है, जिसके दोनों ओर बहुत सारी दुकानें हैं।
0: इन दुकानों में उपहार, मिठाइयां और दूसरी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे हाथ से बने चावल के गर्मा गर्म पापड़ या आजुकी दानों के मीठे पेस्ट से भरी निंग्यो याकी। वहाँ टी शर्ट, हाथ के पंखे और चॉपस्टिक्स भी मिलते हैं।
3: नाकामिसे गली के अंत में सेंसोजी मंदिर का मुख्य भवन है। टोक्यो स्काई ट्री भी पास ही है, वहाँ आप पैदल जा सकते हैं।
0: बहुत सारे पर्यटक इन दोनों जगहों पर एक ही दिन में जाते हैं। आपको अगर मौका मिले तो इस क्षेत्र में टहलने का आनंद जरूर लीजिएगा।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम मंदिर से तावीज खरीदेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: इराश्य मसे।
1: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए। ताम और दुकानदार की गुफ्तगू वाले हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें।
2: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
3: ああ、忍者。
4: いらっしゃいませ。
2: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。
3: お寺ですか？
2: 行きましょう。
6: トラベルガイド।
7: अब मियां का सफरी हिदायतनामा। इसमें आज टोक्यो के मशहूर सियाहती मकाम असाकुसा का तारुफ पेश है। ये आज के मकालमे का मकाम भी है।
1: टोक्यो के मशरकी हिस्से में वाकई असाकुसा में हमेशा सयाहों की भीड़ होती है। कामिनारी मोन दरवाजा सेंसोजी मंदिर जाने वाले रास्ते का आगाज है। यहाँ पर लटकी हुई बड़ी सुर्ख कागजी लालटेन दूर से ही नजर आ जाती है। इसके बाद मंदिर के मरकजी हॉल की जानिब जाने वाली नाकामी से दोरी नामी गली है। ये 250 मीटर तवील शॉपिंग स्ट्रीट है।
7: इस गली में दोनों जानिब कई दुकानें हैं, जिनमें तहाइफ से मिठाइयों तक हर किस्म की अशिया फरोख्त होती हैं।
1: मिसाल के तौर पर हाथ से सेके हुए गर्मा गर्म राइस क्रैकर, निंगियो याकी नामी छोटे छोटे स्पॉन्ज केक जिनमें सुर्ख फलियों का पेस्ट होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ अकसाम की टी शर्ट्स, रिवायती फोल्डिंग पंखे और चॉपस्टिक्स भी होती हैं। नाकामी से दोरी नामी गली के आखिरी सिरे पर सेंसोजी मंदिर का मरकजी हॉल है।
7: अनवर साहब, टोक्यो स्काई ट्री भी गालिबन वहाँ से करीब है ना?
1: जी हाँ, पैदल कुछ ही देर की मुसाफत पर है। अक्सर सयाह सेंसोजी मंदिर और टोक्यो स्काई ट्री की सैर एक ही दिन में कर लेते हैं। सामीन, आपको टोक्यो आने का मौका मिले तो असाकुसा इलाके का चक्कर जरूर लगाइएगा।